0: वक्त कभी कभी किसी खत की तरह दिल के दरवाजे पर छोड़ जाता है कोई भूली बिसरी याद, कोई भूली सी दास्तां। लम्हा लम्हा एक पूरी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। सन 2000 तक पोलियो मुक्त विश्व का सपना साकार

0: चा ने किया है
1: राधे श्याम राधे श्याम।
0: अरे राधा, ये किस फिल्म का गाना है?
1: ये गाना नहीं है भाभी, ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है।
0: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी?
1: क्यों नहीं, जरूर। और आपके लिए 10-25% की छूट भी है।
2: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.